सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चोरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद से चढ़ती कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: या $499 है. अभी मैं इंटरेक्ट चेक कर रहा था, आज हमने कम से कम 15 बंदों को कॉल लगाया हमारी फीस के लिए जिनकी फंडिंग आ चुकी है, तो उनमें से मेरे को 8 के पैसे आ गए. बाकी धीरे धीरे रात तक इंटरेक्ट आते रहेंगे. हमें काम होने के बाद लोग ब्लेसिंग से खुद ही पैसे देते, मांगना नहीं पड़ता हमें. ओके, छोटी सी फीस है, काम होने के बाद फंडिंग आपके अकाउंट में आती है. ईमानदारी आपकी चेक हो रही है, हमारी नहीं. नंबर 4372-264-31-75 4372-264-31-75 4372-643175 तुसी हुने भी कॉल कर सकते हो जी, असेसमेंट करा सकते. 4372-264-31-75 4372-264-31-75
1: बहुत शुक्रिया जी. सो 4372-264-31-75 4372-264-31-75 यूनी ग्लोबल एडवाइजरी 218 एक्सपर्ट बुलवर्ड मिसिसागा दे तुसी जाके आओ, उत्थे जाओ, 15 मिनट लगने हैं, असैसमेंट थोड़ी कर देंगे, किन्नी फंडिंग लई तुसी एलीजिबल होने हो थोनू राइट वे दस देंगे, या तुसी कॉल कर लियो, वट्सअप कर लियो की डॉक्यूमेंट चाहिए आ ते की थोनू लैके आना आ. तुसी पहला कॉल करके पुछ सकदे हो 4372-264-31-75 जानकारी सारी तुसी ग्रांट्स दी लै सकदे हो 4372-264-31-75. बहुत बहुत शुक्रिया नागपुर सर, थैंक यू सो मच. ते 9056733337 9056733337 ओ बड़ा कुछ इकट्ठे चल पिया जी. हाँ
2: नी तेरी पूनिया दी परी चिंगा, मैं चाहवांगा ये जो मैं गाना गा रहे हैं जी.
1: 9056733337 मास्टर सलीम जी आ रहे ने 24 जुलाई नू मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे जगह, बड़ी लग्जरी खूबसूरत शाम होने जा रही है.
2: मैनू इवें लग रहा है कि बिल्कुल मेरे नाल बैठे ने और मैं उन्हां नू ये गाना.
1: ये जी महफिल होनी है सुरां की महफिल मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच, तुसी अपने टेबल्स बुक करवा लो, अपने यारां दोस्तां परिवारां दे नाल जाना चाहुंदे हो तां क्या बात है. सो ऐसिया खूबसूरत मुरखिया के लिए जे तुसी आशक हो चंगे गायकी दे चंगे संगीत दे, तां मास्टर सलीम 24 जुलाई नू मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच पहुँच रहे हैं. तो टिकटां लै लो तुसी milnatix.com तो, या तुसी डिस्काउंटड जिहड़ी $50-60 वाली टिकट $40 दे $39 दे विच लैणी आ, तुसी मैनू कॉल कर लो. मेरे कोल कुछ टिकटां पईआं ने ते मैं तुहानू $39 दे विचों टिकट दे दूंगा. 4378700001 4378700001 4378700001 मैनू रेडियो उड़ान इंस्टाग्राम ते तुसी DM भी कर दिओ ते तुहानू तां वी टिकटां तक थोड़े वास्ते अवेलेबल करवा दांगे.
2: गंगा गया गल मुकदी नहीं, 100 100

0: 833 85
1: थैंक यू सरू जी। 416 833 85 33 नंबर है। सो थानू सब नू जिवें जानकारी असी कल भी दित्ती सी कि थोड़े अपने शहर टोरंटो ब्रैम्पटन मिसिसागा भी एक ऐसे आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं जिन्हां नू लाइव सुन के ना लगता कि यार तुसी भी पता नहीं थोड़े कन्नां नू ऐसा एक सुकून मिलता के बस छाड़ी गल्लां दो। तुहानू पता कौन आ रहा 24 जुलाई नू लाइव परफॉर्म करन लई ते बड़े लोगों नू पता नहीं भी ये भी उन्हां दा गीत है।

0: और किस्ती पड़ी का कल
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल तुहाडीआं लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते कर आसानी नाल लेके दिंदे ने रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल आज ही कॉल करो 416 917 7763 416 917 double

0: हीट पंप दे रहे हैं जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है।
1: इस गल ते मैनू पूरा यकीन है, उते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने, ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री बार कर देंगे, नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने।
0: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ?
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ?
1: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: सॉन्ग्स बड़े जिहड़े वधिया वधिया सॉन्ग है, माई नेम इज़ लखन, आपके आ जाने से आजकल याद कुछ आप आने लगे, दिल ले गई तेरी बिंदिया, बहुत सारे इन्हां दे गाने जिहड़े बड़े मशहूर है। सो इन्हां दे ना जिवें दूजियां भाषावां दे विच वी इन्हां ने गीत गाए है, जिवें उड़िया च इन्हां ने गीत गाए हुए आ, सो फिर हिंदी फिल्मां दे विच वी इह आ गए। सो मर्द टांगे वाला उत्थों फिर इह ज़्यादा जिहड़े उंज मशहूर होए सीगे, जिन्हां नूं ज़्यादा नॉलेज है जी हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स दी। सो अन्नू मलिक जिहड़े इन्हां नूं लै के आए सी मर्द फिल्म दे विच, इन्हां ने जिहड़ा गाया सी गाना मर्द टांगे वाला, सो फिर इह फेमस होए सीगे। उस तों बाद काफ़ी गीत काफ़ी फिल्मां सीगियां इन्हां दियां, सो जिक्र करांगे अग्गे जाके। तो हुण आपां लईए पहलां मनजीत नूं, अपलायंस जंक्शन तों मनजीत जुड़े आ, फिर गल्लबात जिहड़ी आ तुहाडे नाल अगली करांगे। ते लओ जी सारांश जी वी आ गए, उहनां नाल वी गल्लबात करांगे, पर पहलां आपां गल्लबात मनजीत नाल अपलायंस जंक्शन तों करदे आ। ते मनजीत की हाल चाल है जी?
1: बस वधिया जसविंदर जी, प्रोग्राम सुनने सारे श्रोतियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहला जिन्हें भी कस्टमर इस टाइम अपने घर के लिए 3 पीस का किचन सैट का बंडल देख रहे हैं, या तुम नवे घर से मूव हो रहे हो या पुराने अपलायंसेस कढ़ के नवे रिप्लेस करने ने, सो इहदे विच 36 इंच वाइड का आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला फुल साइज फ्रिज है, ग्लास टॉप का इलेक्ट्रिक स्टोव है, कन्वैक्शन के एयर फ्राई ओवन के नाल बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील की डिशवाशर है, $5,500 की वैल्यू का 3 प्रीमियम अपलायंसेस का सैट है, जिहड़ा कि सिर्फ $2,799 से इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। इस टाइम काफी क्लाइंट्स ने जिहड़े अपने किचन रेनोवेट कर रहे हैं, जदों तुसी किचन रीडू कर रहे हो ते तुसी बिल्ट इन अपलायंसेस दे विच जे डील देख रहे हो, बिल्ट इन अपलायंसेस दा पूरे दा पूरा बंडल सैट है, जिहदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज, 36 इंच दा बिल्ट इन कुकटॉप, 30 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील दी डिशवाशर, $13,000 की वैल्यू का बिल्ट इन अपलायंसेस का बंडल है, जिहड़ा कि सिर्फ $6,999 $6,999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जिन्हें भी कस्टमर इस वीकेंड वॉशर ते ड्रायर दे विच डील देख रहे हैं, फ्रंट लोड का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का स्टेनलैस स्टील कलर का वॉशर ते ड्रायर का पेयर है, जे जगह की घाट है तुसी वॉशर के उपर रख के ड्रायर नूं स्टैक भी कर सकते हैं, $2,200 की वैल्यू का वॉशर ते ड्रायर का सैट है, जिहड़ा कि सिर्फ $1,499 $1,499 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच साडे टीवी सैक्शन च 75 इंच का LED स्मार्ट QLED टीवी है, जिहड़ा कि $1,600 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $999 च एक्सकलूसिव इस वीकेंड अपलायंस जंक्शन ते तुसी लगा सकते हैं। दो लोकेशन तुसी सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन वैसट मिसिसागा रोड ते स्टील, ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क। नंबर टू कॉल इज
0: बड़े कमाल दे जिहड़ियां तुहानूं डील्स मिलणगियां अपलायंसेस दे विच, 905-450-0054 ते तुसीं गल्लबात जिहड़ी ओह कर सकदे हो। ते लओ जी आपां हुण सारांश नूं लईए, ते सारांश दी लाइन जिहड़ी है डिसकनैक्ट होगी, ते सारांश ज्यादा दुबारा कर लो कॉल, ते फिर तुहाडी गल्ल बात भी करते हैं, क्योंकि बड़ा वधिया जिहड़ा ना ग्रांट गौरमेंट दे रही है ना, सो तुसीं इस ग्रांट का फायदा लै लो, क्योंकि ये कहिंदे बस थोड़ी देर ही है, इसी महीने आपां कह सकते हैं जुलाई दे विच, बस अगस्त तो कहिंदे फिर लोन ही मिलना, ते लोन तां यू हैव टू रीपे है ना, वह वापस करना पैंदा, पर ग्रांट है जिहड़ी वह वापस नहीं करनी पैंदी। सो तुसीं जरूर जिहड़ी है वह कॉल करो सारांश नूं, ते सारांश नाल आपां गल्लां बातां भी करदे हां, ते करो कॉल ते करिए गल्लां बातां, फिर अगला गीत भी लाउंदे हां। अच्छा गीत ना बड़े कमाल दे इहनां दे होर हैगे, मैं देख रही सी बहुत सारे है ना, ते फिर सुनाउंदे आ तुहानूं, मैनूं ना बड़े वधिया लगे इहनां दे गीत, आपां 80-90s दे गीत है, सो ये बड़े कमाल दे हुंदे सारे गीत। ते लओ जी पहलां हुण आपां गल्लबात करिए सारांश नाल यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो। पहला मैं नंबर एक बार दे दिंदी हां तुहानूं, 437-264-3175 ते गल्लबात करनी है, तुसीं 4372643175 ते तुसीं यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक नाल गल्लबात करके सारी जानकारी लै के वधिया ग्रांट दा फायदा तुसीं चुक सकदे हो। सारांश की हाल चाल जी? जी बहुत वधिया, ते लो जी फिर दो जानकारी थोड़ी जी साडे यूनी ग्लोबल एडवाइजरी ते की कुछ चल रहा है, ते किन्ने क लिसनर साडे पहुंच चुके हैं जी थोड़े कोल, ते फायदा लै चुके हैं?
1: हाँ जी, हमें लाइक कम से कम आपके थ्रू आगे हो गए 10 के ऊपर लिसनर जो कि एनरोल हो चुके हैं, छोटे से टाइम में, हमें महीने ही हुए आपके साथ अभी, और बाकी कहते हैं इसमें लोग समझ रहे हैं, लोगों को पता है, पब्लिक है, सब जानती है, थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आज है तो कल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है ये चीज। आज गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई स्टोर है किसी चीज का, आज मैं सेल दे रहा हूँ कैलेंडर डे पे, तो फिर मैं बोलूंगा अब नहीं मिलेगी इसे, तो हफ्ते में फिर से वही सेल दे रहा हूँ, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। जब हम गैस स्टेशन पे 5 सेंट पर लीटर बचाने के लिए 1 घंटा खराब कर सकते हैं, दूर तक लाइन में खड़े हो सकते हैं सेविंग करने के लिए 5 सेंट पर लीटर, तो क्या हम ऑफिस आके हमारे या फिर कॉल करके इतना लाइक 30 से $100,000 की फंडिंग नहीं ले सकते? मतलब पैसा बचाने की सोच ली, कुछ कमाने की भी सोचे ना आप, तो 30 से $100,000 की फंडिंग हासिल करें, जिसका मेजर पोर्शन आज ग्रांट्स है, लोन नहीं है। लोन तो पहले हमें पता है बहुत है, तो मतलब ग्रांट है, ग्रांट उसे कहते हैं जो पैसा हमें वापस नहीं करना, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी फ्री फंडिंग होती है, आपके खाते में आती है। फंडिंग का वर्ड सुनकर हमें लगता है भाई साहब क्वेश्चन मार्क बनता है कि यहाँ कुछ कैच होगा वहां कुछ कैच होगा। हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, हम कोई और फंडिंग में डील नहीं करते, क्योंकि उन फंडिंग में ठोक के कह रहा हूँ कमीशन होती है, पेपर सेट होते हैं ज्यादातर केसेस में,
0: ठीक है।
1: तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ना पेपर सेट है, ना कोई पेपर में एडिटिंग होती है, गवर्नमेंट पेपर आपके पहले से ही है। बैंक को तो हमें आपको बैंक तो है नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कागज आपके पहले से ही है, इसलिए आप पीछे ना रहे। आपकी जो भी उम्र है, आपसे 75 के हैं और पेंशन पे आपसे 30 ईयर्स के हैं, आप स्किल डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, घर के कम्फर्ट से लॉग इन करें, और लाइक आप मैनेजमेंट सीखें, अकाउंटिंग सीखें, और फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज। अगर आप सिंगल हैं आपको फायदा नहीं है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे $70,000 से आपको फायदा नहीं नहीं नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे आपको अच्छा फायदा है। अगर आप मैरिड है, मैरिड विद किड्स है, ये रिटायर्ड कपल है, यंग कपल है, अच्छा बेनिफिट है। लाइक आप मान के चले जो लाइक फैमिली ऑफ फाइव को $100,000 की फंडिंग जाती है, फैमिली ऑफ फाइव को, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, साल से कोर्स करते हैं,
0: ठीक है,
1: आपके खाते में आते हैं, हमारे खाते में तो आते नहीं है, और ज्यादा पोर्शन 50,000 तो ग्रांट ही ना उसमें से।
0: अच्छा सरांश, जैसे अब लोन तो पहले ही बहुत होता है कईयों के पे, है ना, सो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही ले ली जाए, ऐसे है कुछ?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप मान के चले हमारे 20% क्लाइंट ग्रांट से खुश जाते हैं, देयर हैप्पी विद ग्रांट, हमें लोन चाहिए ही नहीं।
0: अच्छा,
1: बट लाइक ज्यादातर जब लोग ऑफिस आते हैं लोन भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर फैमिली ऑफ थ्री है उनको $60,000 की फंडिंग मिल जाती है, उसमें से 30,000 तो ग्रांट हो गया, जो 30,000 लोन हुआ उसका क्या सीन है कि आपने वो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना। नंबर वन, कैसा लोन है, जो ऐसा कौन सा लोन है जो आप 1.5 साल बाद लौटाएंगे? ओके, लौटाना स्टार्ट करेंगे, 10 साल की किस्तें बन जाती है, 10 साल कम है, 14.5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हम उसको, और 14.5 साल तक, और शुरू में ब्याज क्या है 0%।
0: अच्छा, 1.5 साल बाद ब्याज क्या है 2%। डेफर भी हो जाएगा अगर हम नहीं पे कर सक रहे, कोई जैसे जॉब नहीं लगी, पैसे नहीं है हमारे पास, तो वो डेफर हो जाएगा, इनकी आगे चला जाएगा, हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है,
1: बिल्कुल जी, ये चीज है। और इसमें मतलब ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं कि आपने जॉब ही करनी है, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है इस फील्ड में करने, कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जितने डाउट है वो मैं कॉल करें, ऑफिस आए, जितने केस देखने देखे, जो लोग कर रहे हैं वो मैं फोन करते हैं, सर सेकंड में नोल करा दो, जो लोग नहीं करते वो क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। बट टाइम कमी रह गया है आपको, उसके बाद फायदा नहीं है, आज ही फायदा है। कोई भी आपकी एज लिमिट इसमें मैटर नहीं करती, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, आपको अच्छा बेनिफिट है। 2-3 घंटे क्लासेस लगानी है फोन पे, सर और क्या करना है आपने, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
0: जो फीस है आपकी वो आप पहले लेते हो कि बाद में लेते हो?
1: हम बाद में लेते हैं फीस अपनी। जैसे कल भी अराउंड 6 बंदों का अप्रूवल आया जिनके खाते में फंडिंग गिरी है,
0: ठीक है,
1: उन्होंने ज्वाइन करा था मई बैच में, हमें मई वाले बैच में, तो उनका लाइक जुलाई आ गया, तो मतलब उनका फंडिंग गिरी उनके खाते में, तो उतना टाइम लग ही जाता है 30 से 60 दिन तक। तो अब 6 महीने से अब हमारे ऑफिस से फोन गए, अब वो हमें हमारी फीस दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, या $499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, नॉट कमीशन, नॉट फंडिंग, नॉट नथिंग। मेरे को लेने
0: जाने की फंडिंग से आप बता रहे हो, कोई लालच नहीं है, फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं है? कई बार बाद में कहते हैं अब ये भी है जी, ऐसे तो नहीं है कुछ?
1: देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोग आते हमारे पास कहते हैं सर किसी और एजेंट पे गए थे, उसने 3500 रुपए मांगा, कुछ ऐसे भी कहते हैं आगे कि पहले एनरोल कर लिया उसके बाद पैसे मांग लिए $1,000 $2,000। मतलब मैं हैरान हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कितनी चलाकी करते हैं। हमें जो चलाकी हमें आती नहीं, हमें करनी है। हम थाजर कर रिश्ते से काम करते हैं, पहले क्लाइंट आता है, फिर अपने माता पिता को लेके आता है, फिर पड़ोसी को लेके आता है, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब काम है ना, हम इंडस्ट्री से काम करेंगे, आगे बढ़ जाते धीरे धीरे। 199 या 499 फीस है हमारी, जैसे काम होने के बाद देनी है। नंबर नोट करें, कॉल करें, ऑफिस आए, टाइम कम रह गया है। गवर्नमेंट जब इतना पैसा बाहर फॉरन एड इसी चीज पर लगा देती है, तो गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है, मिस ना करें, कॉल करें। 437-264-3175 फिर से कॉल करें जी, फिर से नोट करें नंबर 437-264-3175 4372643175। कॉल करें, एस्टिमेट ले, ऑफिस आए, 437-264-3175
0: जी। थैंक यू सनाज। ते नंबर मैं एक बार फिर दे दिनी हाँ, 437-264-3175 ते तुसी गल बात सराशना कर सकते हो, ते ग्रांट दा फायदा चुको, एजुकेशन लो, वधिया रहोगे जी।

0: हाँ जी सर, की हाल चाल?
1: जी सत श्री अकाल, कैसी हैं आप?
0: जी सर बहुत अच्छे हैं, थोड़ा शॉर्ट रखिए प्लीज। हाँ जी
1: बिल्कुल, शॉर्ट ये कि कल का मैच बड़ा जबरदस्त था, पोर्चुगीज और क्रोशिया का, और ऐसे मैचेस बहुत कम देखने मिलते हैं फेस टू फेस विद मैन ईटिंग टाइगर। अब जो होगा तो फिर कनाडा और मोरक्को का होगा मुकाबला।
0: जी कल है, मुझे लगा
1: बड़ा सख्त है।
0: कल है?
1: जी जी जी जी कल है, उसके ऊपर सबकी नजर है, बाकी ये छोटे मोटे तो चलते रहेंगे, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को समझने वाले। बहरहाल शॉर्ट बिल्कुल, टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा अपना वक्त दिया। कीमती नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया बोलते मोर क्लियरिटी से, यानी आसानी से नजर आना। नुमाया हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चा है तेरे बारीक बीनों में। शुक्रिया बहुत बहुत
0: जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते बिल्कुल जी, ते बड़ी वधिया गलबात करके जाते हैं। लो जी आप हूँ लेंदे हाँ राणा भाजी नू, ते राणा भाजी साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, ते इन्हां दी कॉल लेंदे हाँ। जी भाजी की हाल चाल जी?
2: थैंक यू सो मच पंजी, तुहानू ते अपने सारे लिस्टर्स नू प्यार भरी सत श्री अकाल। सो जिद्दां आपां RDSP दी हमेशा गल करदे आ, रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान, जिहदे अंडर की है फैडरल गवर्नमेंट वालों $90,000 तक की ग्रांट दी जा रही है, जो भी लोग जिन्हों की एज 49 साल तो घट है फिजिकली या मेंटली डिसेबल ने, तो उन्होंने को दो चीजा होनी चाहिए, एक तो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट एंड सैकेंडली वैलिड जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि पहला सिर्फ जी ग्रांट सी प्रोवाइड की जाती थी जो लोग इतने PR या सिटीजन है, पर बाद चो गवर्नमेंट ने जो है चेंजेस की, जो लोग इतने पक्के नहीं भी है, अगर तुम्हारे को सोशल इंश्योरेंस नंबर वैलिड हैगा, डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा, तो आप सारिया जो ग्रांट्स ने ले सकते। कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000, वैबसाइट है punjabinsurance.ca। तो नाल ही पेंडी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कीतियां ने, जिन्हां बच्चों की एज 18 साल तो घट है एंड पेरेंट्स के कोल उनका डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा, तो $3,480 जो है गवर्नमेंट वालों एक सैपरेट जो है बच्चों जो दिता जा रहा है, पहला यह अमाउंट काफी घट हुंदा सीगा। सो कह लिया जाए $290 जो हर महीने जिन्हें भी स्पेशल नीड वाले बच्चे ने

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
0: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियां इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905 458-6800

दो चार कॉल लाऊंगा सिर्फ। किन्नी देर बाद तुसीं बुग्गा साहब दे गीत सुने अज्ज, तुहानूं चंगा लगा सुन के? बीबा बुआई जी, अज तुहाडा मूड सी, अज मेरे वीरां ने तीन आर्टिस्ट दे विच्चों मानक साहब, बुग्गा साहब ते बब्बू मान दे विच्चों सतविंदर बुग्गा नूं वोटां पाईआं। कैसी कमाल दी गल्ल है, इहदा मतलब तुसीं सतविंदर बुग्गा साहब नूं प्यार करदे हो। मेरे

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
4: इंडिया दिया टिकटा चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
4: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया, मिल जानगियां?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
4: परोसेमन सर्विस ते

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets de pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar.
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਟ। ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
6: ਆਜ
7: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए जी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा

0: कर लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना महंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना महंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना महंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात करने लई हुणे कॉल करो 905-564-6444। 905-564-6444।

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोकी आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहंदे ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो, तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381, 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज, डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हां, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਟੌਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 416-457-3381, 416-457-3381।
2: ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

करण ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: Toronto Star.
1: क्या बात है, वेरी गुड. प्रोग्राम है पंजाबी रा. सो जैस्मिन सैनलेस heritagesounds.ca heritagesounds.ca. एक थोनू गड्डियां दी डीलां भी दवा दी है ते फिर लाउने गाना वधिया जिहा. किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना, टॉप टॉप टॉप दा नाम इक्को है, वो है एरन मिल्स एक्यूरा. एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो. नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल. सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828-5800 ते कॉल करो. वेरी गुड. एरन मिल्स आके रहे कि यार तुसी अगर फेंस दी रिपेयर करवानी है या फेंस नमी लगवानी है, डैक दी रिपेयर करवानी है, डैक तुसी नमी लगवानी चाहते हो, तो राइनो फेंस एंड राइनो बिल्डर्स दी टीम नू कॉल करो. नमी डैक, नमी फेंस या रिपेयर 647-804-3220 647-804-3220 647-804-3220 647-804-3220 647-804-3220. एक यार वीर ने पुछया सी, एक वीर ने साडे लिसनर, ते ओना नू ट्रक दी पार्किंग चाहिदी है बोल्टन दे विच, ट्रक दी पार्किंग चाहिदी है इन बोल्टन. सो थोड़े कोल जे ट्रक दी पार्किंग अवेलेबल है बोल्टन दे विच, या तुसी जानदे हो जिन्हां कोल हैगी है, मैनू कॉल करो ते मैं उस वीर नू नंबर भेज देवां. स्टूडियो दा अपना नंबर है अपना 905-673-3337 905-673-3337 अपना फोन नंबर है, ते स्टूडियो दा नंबर है 905-673-3337. वीर उन्होंने दवा दी यार हुण पार्किंग, जे आपां ना दवा सके ते होर दवाऊगा केड़ा. नाले किसे जिहड़े बंदे दे कोल यार्ड है उन्हां दी बल्ले बल्ले उन्हां दी बहरा बहरा उन्हां दी टिक दे कहिंदे हुंदे कि पार्किंग बिल्कुल फ्री दे विच ही फुल करके दे रहे हैं आपां. सो दस्सिओ मैनूं जरा ते वीर उन्हां नूं दईए आपां नंबर ट्रक दी पार्किंग जे किसे कोल वी हैगी आ. एक मैं फार्म दे वर्करां दा तुहानूं दस दिंदे आ. फार्म वर्करस जे तुहानूं चाहीदे, जे तुहानूं जॉब चाहीदी है, ये पिक भी करनगे, ये ड्रॉप भी करनगे, ते टाइम सिर पेमेंट भी देणगे, थोड़े घरों चक्कणगे छड्डणगे, या राइड भी मिल रही है. फार्म दे लई ग्रीन हाउस लई वर्कर चाहिए है. नंबर है 647-278-5394 647-278-5394 647-278-5394 दे उत्ते तुसी कॉल कर सकते हो, एंड फार्म दी जॉब अवेलेबल है. मंजीत साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तो. मंजीत किवें हो, की हाल है?
2: बस वधिया नवीन, प्रोग्राम सुन रहे सारे स्रोतों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल. ते इस वीकेंड दीआं स्पैशल डील्स ने, सब तो पहला स्टार्ट करांगे टीवी सैक्शन तो. 75 इंच का LED स्मार्ट QLED टीवी है, जिहड़ा कि रेगुलर $1600 की प्राइस तो घटा के एक्सकलूसिव सिर्फ $999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं. जे बिग स्क्रीन 98 इंच दे विच डील देख रहे हो, तो 98 इंच का सैमसंग ब्रांड का LED स्मार्ट 4K टीवी है, जिहड़ा कि $3500 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1899 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं. जिन्हें भी कस्टमर इस टाइम अपने किचन स्टेनलेस स्टील कलर का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का वॉशर ते ड्रायर का पेयर है, जिहड़ा कि $2200 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1499 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं. 6 मंथ तुसी पेमेंट करनी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, 2 लोकेशन तुसी सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन वैसट मिसिसागा रोड ते स्टील्स, ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क. नंबर टू कॉल इज 905-450-0054 905-450-0054 अपलायंस जंक्शन. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम नवी.
1: थैंक यू मजीद. 905-450-0054 905-450-0054 आ जाओ फिर. सुनिए कहिंदी पैग पुग ला लिया करी है, पता नहीं जे यही तरीका जे हुण किसी याद आ रही है, वा पैग ला लो ते फिर है फिर पंगा ही पऊगा, होर की पैना. चलो कोई ना, पंगे पाउण नूं आपां पहल ही करदे हुंदे आ.